मानस खाने करे निवास चुरी भगंतन गलत आकन कर भ्रमण पूरे ना ओ न भी आवे साथ कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहा सजम तजम का डेरा दू नानक रहया भरपूर मथे टिक्का तेड़ पोती का खाई हाथ चुरी जगत कसा नील वस्त्र पैर होए परवान मलेश तान ले पूजे प्रा अपख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े आर मत पिटै वे मत पिटै एओ अन असाडा पिटै तन पिटै पेट करे मन जुटे चुली परे कहो नानक सच ध्याइए सच खोवे ता सच पाइए।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने TVK को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल TVK प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व

0: फैलेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

0: सिर्फ साक्षरता सिक्ख्या नहीं, ना ही ज्ञान सिक्ख्या है, बल्कि विशाल सोच अते स्याणप दा विकास ही सिक्ख्या है।
1: ज्ञान अमृत तो बाद आउन सरवन कर दें भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक

तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: साहित्य सुधा दा समा रहेगा शाम 7:40, 7:50 ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे होएगा। रात 8 बजे जिंदगी हसीन है ते रात 8:15 सुर सरिता प्रोग्राम च अज दे कलाकार होंगे प्रदुमन। रात 9:30 संस्कृत भारती ते रात 10 बजे संगीत दा अखिल भारती प्रोग्राम, ये दोवें सिलसिले साडे दिल्ली केंद्र तों प्रसारित कीते जाणगे। सो जी, ए सी परिचय तहत अज दिन भर प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दे बारे च जानकारी।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर.एन. रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलम् ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान

0: विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया सम्पादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्गनिर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितञ्चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से सी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबरां। भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिमी बंगाल दे नवे मुख्यमंत्री होंगे। तमिलनाडु सी जोसफ विजय दी अगुवाई वाली टी वी के पार्टी राज सरकार बनाउन जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की मजबूती ते सुरक्षा सिर्फ सरहदां दी रक्षा तक सीमित नहीं सगो समाज वातावरण ते इस ते नागरिकां दी सुरक्षा नाल जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय महिला कमिशन ने औरतों खिलाफ के नौने जिनसी जुर्मां संबंधी मामलों च तेजी नाल सुनवाई सख्त निगरानी ते पैरोल ते पाबंदी दी मांग की है। भारत ते सिंगापुर ने रणनीतिक भाईवालां वजों दहशतगर्दी दा मुकाबला करन लई दुबले सहयोग दी महत्ता ते जोर दित्ता है। भारत ते आस्ट्रेलिया विचकार नवी दिल्ली च रक्षा दसवीं रक्षा नीति ते गलबात हुई। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क दा सफलता नाल पर्दाफाश करदे लुधियाना दी एक फर्म दे डायरेक्टर नूं वड्डा GST घोटाला करन दे दोष च गिरफ्तार कीता है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज नाल मुलाकात करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी रोकण संबंधी कानून दियां वक्त मदां ते विचार वटांदरा कीता। पंजाब सरकार ने यूनिफाइड सैंक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन में एक वड्डा मील पत्थर कायम किया। ते भारत की सिमरनजीत कौर शंघाई च तीरअंदाजी विश्व कप च रिकव व्यक्तिगत मुकाबले दे सैमीफाइनल पहुंच गई है। सो ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम

में है चली जान दो। क्यों चली जान दो पियो? क्योंकि जिंदगी दा नाम ही चलना है। सो जिंदगी चलती जानी है तो तुसी भी चलते जाना। जिंदगी च हो सकता है कुछ मुश्किल होवे, कुछ नेगेटिविटी होवे, कुछ तुहाडे मनपसंद चीज़ां ना हो रही होण, तां परेशान बिल्कुल नहीं होना। अपने आप नूं कदी भी कमज़ोर साबित नहीं करना। अपने आप नूं कदी नहीं कहना मेरे को ये कम नहीं हुंदा। ये सारे कहिंदे ने ना भी जिहो जिहा बोलदे हाँ उहो जिहा असीं बन जांदे हाँ, ते जिहो जिहा सोचदे हाँ उह सच्ची मुच्ची असीं अंदरों हुंदे हाँ। सो जे तुहाडे मन दे विच कोई नैगेटिव विचार चल रहा है तो यह मतलब अपनी सोच ते तुहानू थोड़ा जिहा ध्यान देना पैना है कि तुसी किहड़ियां गल्लां ज़्यादा सोचदे हो, है ना, चंगियां कि माड़ियां। हुण पॉजिटिव ते नैगेटिव दा सिद्धा जिहा मतलब है, माड़ा ओ जिहदे नाल किसे सामने वाले दा दिल दुख जाए, पॉजिटिव यानी चंगा ओ जिहड़ा तुहाडी कोई भी गल सुन के जिहदे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए उहदा दिल खुशी नाल गा उठे, वाह किन्ना वधिया बंदे ने गल कही ना, है ना। ये नैगेटिव ते पॉजिटिव दा सिर्फ इन्ना जिहा फर्क है, जदों तुसी सिर्फ ते सिर्फ अपनी खुशी वल फोकस करके दूजियां नूं नीवा दिखाण दी कोशिश करदे हो ते फिर जिंदगी तुहानूं वी किते ना किसे मोड़ ते जरूर नीवा दिखा जाएगी। सो इस करके जिहो जिहा तुसी चाहुंदे हो उहो जिहा विहार दूजियां नाल करो। हाँ, हो सकदा है मुश्किल होण हालात तुहाडे, पर अपने आप नूं कदे भी कमज़ोर ना आखो, क्योंकि जिहड़ा इंसान इन्ने तूफानां तों बाद भी हर सवेर उठ जांदा है उह कमज़ोर नहीं हुंदा, ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਿਆ।

aar.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: इन्हें खास सुनेहा तो बाद सोनी सवेर प्रोग्राम सुनन वाले आंदा फिर तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तुसी पता है अपना कामकाज नालों नाल कर रहे हो, नालों नाल तुसी तैयार भी हो के जिन्होंने स्कूल जाना है, स्कूल तुहानू पता ही है छोटे बच्चों की जिन्हें नवी एडमिशन हुई है उन्होंने स्कूल चल रहे हैं, हाले छुट्टिया का कोई सीज़न नहीं है। हाँ, क्योंकि वड्डियां जमातों के इम्तिहान ने तो छोटिया दे हाले छोटे छोटे इम्तिहान ने, फिर उस तो बाद गर्मी दियाँ छुट्टियां हो जाणियां ने जिन्हों का बेसब्री नाल इंतजार किन्ना किन्ना नूं रहिंदा है भला, ये जरूर दस्यो कभी मौका मिले। तो गर्मियां दियाँ छुट्टियां की गलबात तो हाले नहीं करनी, क्यों? क्योंकि सोहनी सवेर का समा है तो अज हूँ इस प्रोग्राम दे विच समा है अज के इतिहास के पन्नियां वल झात मारन का, वो पन्ने जिन्हां ने जिंदगी तो बहुत कुछ सिखिया तो फिर उन्हां सिखियां हुई गल्लां नूं एहो जिहा इतिहास सर्ज दिता उन्हां नाल कि साडे लई उह पूरने बन गए ते उन्हां तो सीध लै के असीं भी अपनी जिंदगी च अगे वध सकदे हां, कुछ नवां कर सकदे हां, कुछ सिख सकदे हां ते होरां दी जिंदगी नूं प्रेरित कर सकदे हां। अज दे दिन की गल करिए ते अज महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है। महाराणा प्रताप का नाम सुनदिया ही याद आती है बहादरी, आत्म सन्मान, जिन्हां ने आज़ादी दे कोल दे दौरान बहुत कुछ एक ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग दे तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया सुनहरी अखरां दे विच। उन्हां दे जीवन दे नाल जुड़िया हुई बहुत सारिया गल्लां ने ते तुहानूं पढ़िया होना तुसीं स्कूलां दे विच कॉलेजेस दे विच ते अज भी खास तौर पर कई तरह के समागम करवाए जा रहे हैं उन्हां दे जीवन नूं जीवन तो कुछ प्रेरणा लै सकण लई बहुत सारे उपराले किए जा रहे हैं। इस अलावा अज दे दिन की गल करिए ते अज UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जिहड़ा 8 तो लैके 12/5 यानी 12 मई तक मनाया जा रहा है। इस दिन नूं मनाउण दा मकसद की है, कदी सोचिया है? तुसी कहना हाँ बिल्कुल सोचिया है। रोड सेफ्टी दिहाड़ा मतलब हफ्ता जिहनूं कह रहे हैं आपां, इस हफ्ते दे दौरान खास तौर ते इहदी शुरुआत कदों ते किन्ने कीती सी उहदे बारे जे थोड़ी जी गल करिए ते उह गल बहुत खास है। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन वल्लों इस दी शुरुआत कीती गई सी, कदों कीती गई सी इहदे बारे भी गल करांगे ते इह तों इलावा जे गल करिए रोड सेफ्टी सप्ताह दी तां मई दे महीने च इह डेट फिक्स है, मनाया जांदा है 8-14 मई दे दरमियान। ते इहदा मकसद इक्को ही है कि सड़कां ते चलना सुरक्षित होना चाहीदा है। जे असीं गड्डियां कारां चला रहे हां ते रोड सेफ्टी दे विच छोटे वहीकल्स जिहड़े स्कूटर साइकल या पैदल चलण वाले लोग ने उन्हां दे लई भी सड़क ते चलना सुरक्षा दा माध्यम होना चाहीदा है। सो इह तों इलावा जिंदगी दे विच जिंदगी बड़ी कीमती है ते कई वारी असीं अपनी खुशी या बहुते दुख विच जदों असीं सड़क ते जांदे हां जदों खुश हुंदे हां उदों लाउड म्यूजिक हुंदा है, जदों उदास हुंदे हां उदों रोण वाला हुंदा है ना, सारियां चीज़ां साडा सुभा या साडा उस वेले दी मन दी स्थिति साडे ड्राइविंग ते बहुत ज़्यादा असर पाउंदी है। सो इस करके जदों बहुत ज़्यादा खुश होवो उदों भी ड्राइविंग ध्यान नाल करो ते जदों बहुत ज़्यादा उदास होवो उदों भी ड्राइविंग ध्यान नाल करो। तो तुसी कहना फिर ध्यान ये तो काम चलता ही रहना, हाँ हाँ बस एक गीत वांग सुनो की कहता है खास जानदे हां।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर

गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। हप हप खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: ਲਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर

0: और डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।

0: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज।

0: पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
0: खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सुवेंदु अधिकारी अज सवेरे पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह सहु चुक समागम च शामिल होणगे। तमिलनाडु च सरकार दे गठन नूं लैके अनिश्चितता बरकरार। लैफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी भारत के नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विच वध रहे नशीले पदार्थों के खतरे की स्थिति ते चिंता प्रकट की है। ते फुटबॉल विच भारत ने औरतों के AFC अंडर 17 एशियन कप के क्वार्टर फाइनल लई पहली बारी क्वालीफाई करके इतिहास रचा है। हुण खबरां विस्थार नाल। सुवेंदु अधिकारी अज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। सहु चुक समागम कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड विखे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा प्रधान नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रियों ते सारे NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहु चुक समागम विच शामिल होने की उम्मीद है। सहु चुक समागम सवेरे 10 बजे शुरू होना है। इस विच देश भर तो लखा पार्टी समर्थकों, सियासी नेतावान ते पतवंतियों के आने की उम्मीद है। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री अते नवे मंत्रिमंडल के मैंबरों अहदे अते सरकारी भेद गुप्त रखने की सहु चुकाउणगे। इस दौरान नवे चुने गए संसदी पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि एक सेवा मुक्त जज की अगवाई वाला कमीशन राज विच संस्थागत भ्रिष्टाचार की जांच करेगा। उन्होंने अगे कहा कि RG कार हस्पताल अते संदेश खली विच वापरियां घटनावां दी वी जांच शुरू की जाएगी। अधिकारी ने अहद लिया कि पार्टी के चोण मनोरथ पत्र विच कीते सारे वादे समय सिर पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल विच भाजपा सरकार देश दियां सरहदां नूं सुरक्षित करेगी ते राष्ट्रीय सुरक्षा विच सब तो वड्डे पाड़े नूं दूर करेगी। कल कोलकाता विच नवे चुने गए भाजपा विधायकों नूं संबोधन करदिया श्री शाह ने कहा कि भाजपा की जित संगठन का पसार करन जां अपनी विचारधारा की पुष्टि करन बारे नहीं है, सगो राष्ट्रीय सुरक्षा नूं मजबूत करन बारे है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री ने कहा कि लंबे समय तो बंद पईआं योजनावां नूं भाजपा सरकार मुड़ शुरू करके पश्चिम बंगाल दी जनता दियां सारियां आसां उम्मीदां नूं पूरा करन दा काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे

0: मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु टीवी के मुखी सी जोसफ विजय की अगुवाई हेठ सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता जारी ने नवा मोड़ उदों आया जो IUML ने TVK नू सरकार बनाने लई हमायत देण दी खबरां नू रद्द कर दिता। यह भी खबर आ रही ने कि अज होण वाला सहुं चुक समागम नहीं होएगा। इस तो पहला TVK ने दावा किया सी कि अदाकार तो सियासतदान बने सी जोसफ विजय ने कल एक बार फिर राजपाल नाल मुलाकात की थी ते सरकार बनाने का दावा पेश किया ते कहा कि उन्हां कोल बहुमत है। इस दौरान प्रोफेसर खादर मोहिदीन की अगुवाई वाली IUML लिखी है कि उन्होंने पार्टी ने TVK नूं समर्थन पत्र नहीं दिता है। एक होर हैरानीजनक कदम विच AMMK पार्टी दे नेता TTV दिनाकरन ने राजपाल नाल संपर्क किया अते AIADMK दे जनरल सकत्तर एडापड्डी पलानीस्वामी नूं नवा मुख्यमंत्री बनाने लई मन्नार कदुई तों चुने गए इकलौते विधायक दा समर्थन पत्र सौंपिया। केरल विच नवी सरकार दे गठन बारे विचार वटांदरा चल रहा। UDF विच मुख पार्टी कांग्रेस वल्लों एतवार तक अपने नेता दा ऐलान कीते जाण दी उम्मीद है। इस दौरान असाम विच भाजपा दी अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ सरकार मंगलवार नूं लगातार तीजे कार्यकाल लई सहुं चुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहुं चुक समारोह विच मुख मेहमान होणगे। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नूं अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया है। वह जनरल अनिल चौहान की थां लैणगे जिन्हों का कार्यकाल 30 मई नूं खत्म हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अहुदा संभालण की तरीक तो वह फौजी मामलों के विभाग के सकत्र वजों भी सेवा निभाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी भारतीय फौज के एक बहुत ही तजर्बेकार प्रतिष्ठित अधिकारी ने। इस समय सितंबर 2025 तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सकत्रेत में फौजी सलाहकार वजों सेवा निभा रहे हैं। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन समुद्री फौज मुखी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस समय समुद्री फौज की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वजों सेवा निभा रहे हैं। उन्होंने भारतीय समुद्री फौज में करीब 4 दहाके की शानदार सेवा रही है। ये खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा XNLA @AIR जलंधर। आकाशवाणी अज अपनी स्थापना 90 साल पूरे होने मना रहा है। आकाशवाणी की स्थापना 8 मई 1936 ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई सी। अज इस खुशी के दिहाड़े से आकाशवाणी के पंजाब स्थित मुख्य स्टेशन जलंधर और पटियाला एक वॉकेथॉन कराई गई जिसनों पंजाब के कलस्टर हेड और DDG श्री रणजीत मीना दूरदर्शन के DDG RL जारंगल ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अज दोवां थावां ते इस वॉकेथॉन विच आकाशवाणी स्टेशनां दे मुलाजमां समेत प्रोग्राम पेशकर्तावां अते बहुत सारे स्रोतियां ने विशेष तौर ते हिस्सा लिया। इस मौके जलंधर FM रेनबो ते स्टूडियोज़ तो लाइव प्रोग्राम भी किया गया जिसका स्रोतियां ने बेहद आनंद माणिया। जिक्रयोग है कि आकाशवाणी की स्थापना 8 मई 1936 ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई सी। उस समय तो लैके अज तक इसने लगातार लोक सेवा के मिशन निभाद्या देश की तरक्की में अहम योगदान पाया है। देश समेत पंजाब भर में लोगों तक हर जरूरी सूचना पहुंचा खास करके हरी क्रांति दौरान किसानों तक नवी जानकारियां पहुंचा जंगा समय लोगों जागरूक होना जानकारियां सांझिया करन विच इसकी भूमिका काबिले तारीफ रही है। इस तों इलावा कुदरती आफतां ते होर संकटकालीन हालात विच भी आकाशवाणी ने समय सिर सही जानकारी पहुंचा के समाज लिए अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विच वध रहे नशीले पदार्थों के खतरे की स्थिति से चिंता प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज वल्लों नशीले पदार्थों नाल नजिठण के तरीके विच एक बुनियादी तब्दीली की मांग की नाल ही कहा कि मनुखी नुकसान चिंताजनक ने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बैंक ने एक ताज़ा घटना का हवाला दिता जिस विच एक मां शामिल सी जिसने अपने सारे 5 पुत्रां नूं नशे की लत कारण गुआ दिता। बैंच ने कहा कि नशीले पदार्थों का खतरा एक अजे बिंदु ते पहुंच गया है जिथे केंद्र सरकार की दखल अंदाजी जरूरी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने राज अते केंद्रीय एजेंसियां दोवां नूं नशीले पदार्थों के खतरे नूं खत्म करन दे टीचे वल काम करन लई कहा। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत EU सम्मेलन के नतीजों की शलाघा करते हुए इसनों रणनीतिक भाईवाली लिए एक मोड़ दसिया है। खजाना मंत्री कल नवी दिल्ली में यूरप दिवस समारोह में संबोधन कर रहे सन। सोमनाथ मंदिर की मुड़ उसारी की 75वीं वरेगंढ सोमनाथ अमृत पर्व 2026 कल अधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। 5 दिनों के इस जशन विच मंदिर विच वैदिक मंत्रा ते रूहानी ऊर्जा दरमियान देश भर के श्रद्धालु दर्शनों लिए पहुंच रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस ते यूक्रेन दरमियान 3 दिनों की जंगबंदी का ऐलान

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते पेश है महक पंजाब दी प्रोग्राम। आज दे इस प्रोग्राम च पंजाबी फिल्मां चो गीत ने। पहला गीत जिहड़ा तुहानू सुनवाण जा रहे हैं वह है फिल्म जवाक दे विच्चों। आवाज़ है निमरत खैरा दी।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: वीडियो लाइक करने ते पैसे मिलेंगे? सो इजी।
5: फसिया।
6: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। RBI कहंदा है
7: जानकार बनो, सुचेत रहो।

0: दिल उर्मिला टुटेजा गोविंदगढ़ माजीवाला श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो।
1: मतलब अज वो दिन है जिस दिन पूनम जी को पूरी तरह नाल एक्सप्लेनेशन ले जाएगी।
0: जी कहने सानू उम्मीद है कि इस बार दे तुहाडे चिट्ठी मिली प्रोग्राम विच परम जी जी दे नाल पूनम जी जरूर सांझ निभाउणगे।
1: थोड़ा जिहड़ा यकीन सी वो 100% सच्चा हो गया जी।
0: देखो जी दिल नूं दिल दी राह हुंदी है ते तुसी इन्नी शिद्दत नाल याद कीता कि असीं हुण प्रोग्राम दे शामिल रेगुलर हो ही रहे हां ते होया करांगे वी।
1: बाकी एक गल होर दस्सदा कि
0: जी
1: पूनम जी जेड़े ने ना टुटेजा जी थोड़ी चिट्ठी नूं प्रिंट होण तो पहला तय हो चुका सी कि अज पूनम जी होणगे प्रोग्राम दे विच। जी
0: जी शुक्रिया जी याद करन दे लिए। बाकी कई वारी कुछ रजेवे हो जे हो जाते नहीं कि असीं तुहानूं नहीं मिल पाउंदे पर फिर वापस मुड़ आउंदे आं तुहाडे कोल।
1: जी
0: अगे लिखते हैं कि कई बार इंज हुंदा है कि दोहां तो बिना दो एंकर्स तो बिना प्रोग्राम सुनने विच उन्ना आनंद नहीं आता। इंज करया करो कि जदों कोई एक एंकर शामिल नहीं हुंदा तो उसी जगह दूसरे नूं लै लिया करो। कहिंदे कि वीरेंद्र जी नूं भी लैके आया करो। तो एक शिकायत है परमजीत जी कि
1: जी
0: पिछले 3-4 हफ्ते तो सब दी पसंद प्रोग्राम पेश नहीं हो रहा। नाटक की वजह करके साडा सुझाव है कि सब दी पसंद प्रोग्राम नू पहले वाले दिन बुधवार नू कर दिओ।
1: जी
0: तो एक होर सुझाव है कि तुहाडी फरमाइश रात 10:30 बजे प्रोग्राम नू हफ्ते विच 3 वार कर दिओ। बुधवार तो है ही, एतवार एक भी कर दिओ। साडा कहण दा मतलब यह है कि हफ्ते विच रात नू घट तो घट 3 वार
1: जी
0: तुहाडी फरमाइश होनी चाहीदी है। बाकी आखिर दे विच ये कई प्रोग्रामां दा जिक्र कर रहे हैं जिन्हां नू पसंद आए ने।
1: सब तो पहला तो पसंद किए जाने वाले प्रोग्रामों वास्ते शुक्रिया। जिहड़ी तुसी बुधवार की फरमाइश का जिक्र किया है हफ्ते च ज़्यादा दिन करन वास्ते वो फिलहाल संभव नहीं है, वो दे वास्ते माफ़ी चाहवांगे। और जिहड़ी खास करके गल तुसी लिखी है ना जी कि अगर एक साथी छुट्टी ते आ ते उहदी जगह किसी होर नूं लै आया करो, ये खास करके इशारा मेरे वाला, क्योंकि मैं समझ रहा सी कि पूनम जी की गैर मौजूदगी जिहड़ी है उहदा एहसास नहीं होण देंगा, पर पूनम जी देख लो लोग तुहानूं मिस करदे ने सुण वाले, है ना। सो इस करके माफ़ी चाहुंदे हां जी, अगली बार कोशिश करांगे जी कि इस तरह की शिकायत जिहड़ी है वह दूर की जा सके।
0: शुक्रिया जी खत लिखण दे लई। अगला ईमेल जो प्रोग्राम का आखिरी ईमेल भी है अज, ये है जी रमन वर्मा का।
1: जी
0: ये लिखते ने दिव्यांश वर्मा, रमन वर्मा, अमन वर्मा, ये नेड़े बस अड्डा पिंड बुरज हनुमान फाजिलका तो लिखते ने।
1: बुरज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका।
0: जी कहते कि गुरु अमरदास जी के प्रसंग सुने, इसके लिए आकाशवाणी जलंधर का दिलों धन्यवाद जी। प्रसंग सुनाने के लिए इंटरनेशनल मजदूर दिवस से नेहा शर्मा जी ने बहुत वधिया जानकारी दी। सबरंग प्रोग्राम विच कलाम सुने बहुत वधिया लगा। रूबरू प्रोग्राम विच पंजाबी रंगमंच नरिंदर सागी की इंटरव्यू सुनी। नाटक होया देस पराया सुनिया ते दिल नूं छू गया। सचमुच अखां नम हो गई नाटक नूं सुन के। दिलों तारीफ ते दिलों दुआवां जी सारे ही पात्रां नूं। सांझ प्रोग्राम विच बाल विआह ते कानून बारे बहुत ही विस्तार सहित जानकारी दित्ती गई मैडम निर्मल रंधावा वल्लों, वधिया जानकारी सी। देहाती प्रोग्राम विच डॉक्टर मैडम हरप्रीत कौर दालां दी काश्त बारे वधिया जानकारी दे के गए, धन्यवाद। वीरवार नूं 12:05 डॉक्टर बेअंत सिंह हड्डियां दे स्पैशलिस्ट गोडे बारे बहुत ही वधिया जानकारी दे के गए, बहुत ही वडमुली जानकारी मिली। आकाशवाणी दा तहे दिलों धन्यवाद। जीतला लारी दी आवाज़ विच माता दी भेटां सुनियां चंगियां लगियां। साडी माता जी कृष्णा राणी वर्मा वल्लों कहिंदे कि आकाशवाणी जलंधर दा दिलों धन्यवाद है भेटा सुनाउण दे लई। ते 90 साल आकाशवाणी तहत गलबात सुनी डॉक्टर लखविंदर सिंह जौल हुणा दी, बहुत ही आनंद आ गया इस खास इंटरव्यू नूं सुन के। रंगली धरती प्रोग्राम दे विच हरदेव सिंह लालाबाई दी आवाज़ विच प्रसंग सुने एतवार नूं, बहुत वधिया लगे। ते श्री दरबार साहिब तो गुरबाणी कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण मन नूं बहुत सुकून दिंदा है, इस दे लई वी आकाशवाणी दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते अगे कहिंदे कि बेनती है कि जेकर संभव होवे तो साड़ी बड़े चिर तो निम्रता साथ बेनती स्वीकार करो, श्री दरबार साहब तो गुरबाणी कीर्तन का सीधा प्रसारण 100.8 फाजिलका रेडियो तो प्रसारित करना शुरू कर दियो।
1: सब तो पहला तो रमन वर्मा जी और इन्हों के बाकी सारे साथियों का, अमन वर्मा जी का, दिव्यांश वर्मा जी का, डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी का और समूह वर्मा परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने सुने और उस बाबत अपनी राय का इजहार भी किया। श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी का प्रसारण जिहड़ा है 100.8 फाजिलका तो प्रसारित करन बारे कोशिशां जारी ने और सानू पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन्हां कोशिशां दे सार्थक नतीजे निकलणगे। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा जहा इंतजार करो, जल्दी ही कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी।
0: सो जी बहुत बहुत शुक्रिया सारे ही स्रोतियां दा जिन्हां ने सानू अज प्रोग्राम दे विच खत लिखिया, ईमेल भेजे, ते उम्मीद है कि अगे तो भी इसी तरह तुसी प्रोग्राम दे विच अपने खत भेजते रहोंगे।
1: तो इस तो पहला कि आप अपने दोस्तों को इजाजत लीए, प्रोग्राम का पता दस दिए जी। प्रोग्राम थोड़ी चिट्ठी मिली मार्फत केंद्र निर्देशक

कारण ने यह पंछी जड़े हैगे आ यह साउथ वल जाते ने बहुत सारिया ये पिछे फैक्टर्स ने। एक तो यह है कि ये इस तरह जाने माइग्रेशन के नाल उतों अत दी जड़ी कि नैगेटिव 50 माइनस 40 डिग्री जोड़े योजे तापमान ने उन्होंने अवॉयड कर जाते हैं। इस तरह उन्होंने जी है मोरटैलिटी घट जाती अपने आप को बचा लेंगे ने। दूजा खास कारण यह है कि जोड़ा दिन की लेंथ जोड़ा हैगा दिन छोटे ने उत्तरी खंड वाल जदों दक्षण वाल जाते हैं जोड़ा दिन वध जाता है तो उन्होंने खाण पीण लई समा वध मिल जाता है। एक जड़ी हैगी है भोजन की कमी तीन जड़े मुख्य कारण ने जिन्हां करके जड़े पंछी है माइग्रेट करते हैं। पर जदों माइग्रेट करते हैं तो एक होर चीज़ जड़ी हैगी आम तौर पर पूछी जाती है कि ये अंदरूनी कारण करके करते हैं कि कोई बाहरले कारण ने जिन्हों आप एक्सटरनल फैक्टर्स कहने ने। जड़े तो एक्सटरनल फैक्टर मुख तौर पर यह फैक्टर आ कि जड़े दिन की लेंथ दिन की लंबाई दिन का किन्ना चिर घंटे सूरज रहा है ये डिटरमिन करती है। इंटरनली ये हैगा कि उन्होंने जोड़े प्रजनन अंग ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस ने उन्हों की स्टेट की आ, क्योंकि एक्सपैरीमेंट्स ने वर्ल्ड वाइड शो किया है कि जे इन पंछियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस रिमूव उन्होंने करके देखे ने एक्सपैरीमेंट्स के पंछी कैप्टिविटी माइग्रेट नहीं करते उन्होंने इंस्टिंक्ट नहीं होंदा। सो ये भी कारण ने। इस तो इलावा एक चीज़ बहुत मोटे तौर पर समझ की लड़ आ जदों की पंछी अपनी वापसी करते ने दक्षण तो उत्तर वाल उस टाइम सब तो पहला जेड़े कि अडल्ट मेल होंगे ने पहला पहुँचते हैं अपनी नेस्टिंग साइट पर। उस तो बाद आती है अडल्ट फीमेल्स का ग्रुप पहुँचता है तो तीजा ग्रुप वो होंगे है जिदे छोटे बच्चे ने जोड़े कोई साल के ने या दो साल के ने हजे अडल्ट नहीं है वह पहुँचते हैं। पर यह तो रिवर्स होंगे ये तो उल्टा वो होंगे कि जो उन्होंने दक्षण वाल जाना होंगे है उदो पहला की होंगे छोटे बच्चे पहुँचते हैं उस तो बाद अडल्ट फीमेल्स पहुँचदियाँ ने उस तो बाद अडल्ट मेल्स पहुँचते हैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही

0: समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 0181 343 173 ਹੈ ਨੰਬਰ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
2: ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
2: ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।
1: ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? महाराष्ट्र से बात कर रहे हो? अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है?
2: फिल्म का नाम है कभी कभी। और गाने के बोल है मैं पर दो पल का शायर हूँ, पर दो पल मेरी जवानी है, पर दो पल मेरी हस्ती है, पर दो पल मेरी जवानी है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तनुश्री।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लो जी, इन्हें खास सुने हैं तो बाद आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश है ना, ये प्रोग्राम दे तुसी भी हैलो करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हो, वो भी अपनी आवाज दे विच फरमाइश दस के। बहुत बहुत स्वागत जी, कौन बोल रहे हो? सत्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
3: मैं जी कुलदीप सिंह बोल रहा, पिंड लादियां जिला लुधियाना जी।
2: कुलदीप सिंह जी, किन्ने साल हो गए थानू रेडियो सुनदे? पहले तो ये दसो। नहीं, वो तो गल ठीक आ, पर इन्ने साल हो गए थानू रेडियो सुनदे आ, ते जदों गल कर रहे हो तो रेडियो सेट दी आवाज। 31 साल हो गए। अच्छा, रेडियो दी आवाज घट करनी हुंदी जदों आपां ऑनलाइन गल करिए। अच्छा जी, चलो गाना दसो, केड़ा सुनना है? गाना दसो जी। जुदाई फिल्म दा गीत दी फरमाइश है किशोर ते आशा भोंसले होरां दी आवाज च। इन्हां दी पसंद तो बाद थोड़ी पसंद हो सकदी है, बशर्ते तुसी सिफर 141-43-173 नंबर डायल करो ता।

0: शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़।

हाँ जी हाँ जी, तुसी की कर दे जे, असी ते तुहानू याद ही कर रहे हाँ। तुसी की कर रहे हो? तुसी रेडियो सुन रहे हो, तुसी साडा प्रोग्राम धमक जलंधर 35 सुन रहे हो, ते नाल दे नाल लुत्फ उठा रहे होवोगे, या चाह पी रहे होवोगे, या नाश्ता पानी कर रहे होवोगे, ते साडियां भैणां तुहाडी खातिरदारी कर रही होणगियां, या फिर तुसी कम्मां कारां तो साडे प्रोग्राम सुन रहे होवोगे। लो फिर अगले सुनेहे नाल हाजिर, माधोपुरी लुधियाणा तो सुरेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा, प्रिंस शर्मा ते सारा ही शर्मा परिवार साढ़े कोल पहुंच चुके ने जी। लो जी, गुलाब दे फुल्लां दी खुशबू आ गई, ते कौन पहुंच गए ने नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो? रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा, और परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर, और अपने परिवार पूरे परिवार नाल पहुँचते हैं ब्रैम्पटन कनेडा वालों भी नाल लैके। निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया ये भी पहुँच चुके ने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा, उमर अंसारी, रौनकी खान ते समीना अंसारी, ये पहुँचे ने गांव गढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला तो। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो हाजिर ने, और ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर तो मोहम्मद सैयद अवासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार दे सारे ही मैंबर आकाशवाणी जलंधर देवी परिवार दे हिस्सा ने। और अगले सुनेहे नाल पहुंचे खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का ये भी पहुंच गए। महस गेट नाभा तो भी पहुंच गए ने।

जी साढ़े श्रोते नाम सोमदत्त ज्योति राणी कैरव गुरमन्नत, शुक्रिया जी बहुत बहुत। और बेअंत सिंह बस स्टैंड जलाल दीवाल ज़िला लुधियाना तो हाज़िर ने। मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलाल दीवाल ज़िला लुधियाना तो हाज़िर ने। क्या ही बातें ने, ये दोस्त ने कि भरा ने, अलग अलग सुनेहा नाल पहुंचे हो। पर अगले सुनेहे नाल साढ़े कोल पहुंच गए ने जी तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ तो, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, और ये तो चंडीगढ़ तो ने, पर तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा शाहदरा दिल्ली तो ये पहुंचे ने। और अगले सुनेहे नाल हाजिर पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल सानी पिंगा वाला चौंक घराया तो, और भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीमपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार ये भी पहुंच गए। पिंड ते डाकखाना खुईया सरवर तो अबोहर जिला फाजिलका तो रमेश बिल्ला चावला, राइजल हेजल, विहान चावला, आस्था जयश्री, संतोष चावला, हेमंत दीपक, रमेश चावला, रिज्जू बब्बू, विहू चावला, ते सारा ही चावला परिवार पहुंच चुका है। पिंड राजपुरा वार्ड नंबर 8 जगसीर सिंह मेंबर, बिक्कर सिंह साबका सरपंच, अभिजोत सिंह, ज्वाला सिंह, मेला सिंह, गुरसाहिब सिंह, नेता सिंह मेंबर, हरदीप सिंह रामगढ़िया, मंगल सिंह मजवी सिख ये भी पहुंच गए ने। मलोट कैंप तो भी हाजिर ने सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल ये भी हाजिर ने जी। और अगले सुनेहे नाल पहुंचे वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा, और यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ये पहुंचे ने कोटली कलां तो। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी पिंड हीरावाली जिला फाजिलका तो सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, बलवंत सिंह पाठी कबूल शाह तो, और ये साडा प्रोग्राम कहिंदे जी लाइव सुनते ने, शुक्रिया जी बहुत बहुत। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी साढ़े कोल रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान ते इरफान खान पहुंचे ने हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो। और अगले सुनेहे नाल आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होने ते आकाशवाणी जलंधर दे समूह स्टाफ नू सारिया नू बहुत बहुत वधाइयां दे रहे ने। कौन दे रहे ने सोचो, ये ने जी मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, शुक्रिया जी तुहाडा बहुत बहुत। और हमेशा दी तरह तुसी बिल्कुल चौकन्ने रहने हो, सुचेत रहने हो भी की चल रहा है, उस मुताबिक तुसी साढ़े तक सुनेहे भी भेजते हो, ये बहुत वड्डी गल है। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी गिद्दड़ बहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा, करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचियां तो ए बठिंडा तो पहुंचे ने जी जोड़ा परिवार, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन, अभिजोत ये भी पहुंच गए ने। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी 29 के एस डी सादुल शहर तो वेद पाल, इंदु बाला, राकेश, शकीला, रोहिणी, अभिनव, सानवी, मीकू, शशि, बिश्नोई ये भी हाजिर ने। और नाल ही इन्होंने होर भी नाम भेजे ने, वेद प्रकाश, कौशल्या, रोहित, अर्चना, चित्रा, अक्षु खिलेरी, और ए ने जी हरिपुरा अबोहर तो, शुक्रिया जी। अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया गांव फ्रांसी हिसार तो राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। लो फिर पेश करन जा रही हाँ पसंद तुहाडे सारयां दी, भी काफ़िया ने आसा सिंह मस्ताना दी पसंद दसी ते कुछ कहिंदे जी सुरिंदर कौर नू भी सुनना चाहुंदे आ, ते फिर दोनों नू असी इकट्ठे मिला दिता ते गीत भी बड़ा सोहना है, आओ फिर इकट्ठे मिल के सुनदे आ, होर खूबसूरत लगेगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाश।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा, और वैष्णव कलोनी सनावत तो पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, ए हाजिर ने जी मुहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मुहम्मद शाकिर, मुहम्मद अलकमा खत्री, मुहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ ते मुहम्मद शादाब खत्री। अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू ते रजनी पहुंचे ने, और अगले सुनेहे नाल साढ़े तक पहुंचे ने जी पिंड नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा ते अलका मिड्डा, और अगले सुनेहा साढ़े तक पहुंचा शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे। बीड शहर महाराष्ट्र तो हाजिर ने नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पीबी कुलथे। सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो पहुंचे ने, और विजय कुमार गोयल बजीतपुरा फाजिलका तो, कालू पेट्रोल पंप, गुरमेहर सिंह जी ते सारा ही स्टाफ इन्हों का पहुँच चुका है। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया गुरचरण सिंह, गुरलालबीर सिंह, परवान सिंह, हरदया सिंह पिंड डबवाला कलां और फाजिलका तो ये हाजिर ने, नेड़े बंद फाटक मोड़ मंडी तो, ये फाटक बंद ही रहिंदा होएगा वैसे वैसे ही नाम है, शिवजी राम प्रजापति, गुरदेव सिंह, मिठू सिंह कैंत, और मोड़ मंडी बठिंडा तो भुपिंदर सिंह कैंत, रणजीत कौर, लवप्रीत, लवदीप सिंह, मनजीत कौर, कुलवीर सिंह, अंजलि, अमानत कौर, सरताज सिंह कैंत ते सारा ही कैंत परिवार आकाशवाणी जलंधर का हिस्सा बन गए ने। और अगले सुनेहे नाल साढ़े कोल पहुंचे ने जी मोहाली तो अमरदीप सिंह सैनी, लाभ कौर, जीवन जोत कौर और सैवी सैनी। बठिंडा रोड मंडी डाबवाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की तान्या ये भी हाजिर ने, और पिंड चंदमारी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिड्डा, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या ये भी पहुँच गए। कृष्णा पार्क दिल्ली तो भी हाजिर हो गए ने जी सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड, हा हा हवा आ गई, जनकपुरी तो पिंटू दीवाना, रजिंदर सिंह ओबराय ये भी पहुँच गए ने, और अगले सुनेहे नाल पहुँचे ने पिंड चंद बाजा फरीदकोट तो अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत कौर, जगप्रीत सिंह, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, पोती नवकीरत कौर, गुरसीरत कौर ते पोता गुरप्रताप सिंह, सारा ही पुरवा परिवार साढ़े कोल पहुँच चुका है। और तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद ते पेश करन जा रही हूँ मिस पूजा दी आवाज़ च एक गीत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: हुण तुसीं सुन रहे सी फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले दिन दे 12 बज रहे ने। आओ सुनदे हां हिंदी विच समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: क्या बात है, बोलियां सुन के ना नचनू दिल कर आया। ते वाकई कहिंदे जिहड़े गीत हुंदे आ इह साडे मन नूं खुश कर दिंदे, साडी रूह दी खुराक हुंदे ने। ते इक गल होर दसां ज्योति,
1: जी
0: साडी इक खुराक होर भी हुंदी है,
1: जी
0: उह हुंदी है माँ। माँ धरती दे उत्ते इक अजिहा शब्द है
1: जी
0: जिस दा ना कोई भी कहिंदे तोड़ ही नहीं है, ठीक है। ते कल असी मातृ दिवस मनावांगे, लेकिन उस तो पहला
1: जी बिल्कुल जी,
0: आपां इक गीत सुनना है।
1: बिल्कुल जी, कल मातृ दिवस है और देखो तुसी गल माँ दिवस की कीती है, तो पहला माँ दिवस दी सांझ जरूर असी अपने स्रोतिया नाल पावांगे। कल 10 मई का दिन है और माँ दिवस है, और कल का दिन कह लो असी मावां नूं समर्पित है। और अलका जी कहिंदे कि माँ दी थां जिहड़ी है ना उह कोई नहीं लै सकता,
0: कोई नहीं लै सकता,
1: चाहे पूरी दुनिया च असी किते भी चले जाइए, पर माँ वर्गी ठंडी छां जिहड़ी है उह किते नहीं मिलती।
0: बिल्कुल जी। कहिंदे माँ अपने बच्चों लई अपनी हर मुश्किल जिहड़ी है उह सहिंदी है, बिना किसी सवाल तो, बिना किसी स्वार्थ तो, बिना किसी मतलब परिणाम तो। उन्हें नहीं लगता कि इस चीज़ का की अंजाम होएगा कि नहीं होएगा, बस उन्हें अपना बच्चा दिखता, बच्चे का सुख दिखता, वो खुशी दिखती है, वो वास्ते वो सब कुछ करने लिए कुर्बान हो जाती है। और एक बच्चे वास्ते उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी कायनात उसकी माँ होती है।
1: बिल्कुल, और कहते कि कोई सच्चा प्यार करने वाला देखना है ना, तो बस एक नज़र अपनी माँ नू देख लो, क्योंकि माँ का जड़ा प्यार हुंदा है ना वो निस्वार्थ हुंदा है,
0: बिल्कुल
1: है ना। और अलका जी एक गीत दी फरमाइश

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो।

0: सुरक्षित रहो।
1: जी, सुरिंदर कौर ते डोली गुलेरिया गुलेरिया दे गीत तो बाद ते कुछ संदेशों तो बाद असी फिर वापस आ गए। प्रोग्राम चल रहा झांजरा दे बोर,
2: और बहुत सारिया फरमाइशा अजे भी साढ़े कोल पईयां ने, बहुत सारे खत ने, और अगली फरमाइश फटाफट पढ़ दिंदे आ जी। नहर किनारे ढाणी फतेह वाली तो आए ने जी राम सिंह रपाल, खुशदीप कौर रपाल ते नसीब कौर रपाल, मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीश बजाज, ककमौर माजरा जिला कैथल हरियाणा तो रमेश कुमार लोध, संतोष राणी अंकुश लोट, अंकिता लोट ते छोटा बच्चा अनुज लोट, अटवाल नगर वड्डी हैबोवाल लुधियाना तो ने जी बलदेव सिंह मल्लड़ चौड़ा, बहादुर सिंह रोशन लाल, अजीत सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी
1: जी। जिला फाजिलका पिंड पंगला तो मोहन सिंह, सरदार गुरप्रीत सिंह, सरदार सुखप्रीत सिंह चौहान, रवनीत कौर चौहान ते चौहान परिवार, पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता ते गीता, मलोड तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुक्तसर पिंड तो मोहला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहला, दरखत दर्शन बराड़ ते मलकीत कुड़ियाणा। इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश ते सुनदिआं जी मास्टर सलीम ते गुरलेज अख्तर दा एह गीत।

0: जी ज्योति
1: जी
0: कहिंदे कि खत जदों कोई लिखदा ना
1: हम
0: ते मैं पहलां वी गल कीती सी बड़ा अपना खास जेहड़ा की कहिंदे हुंदे उहनूं कीमती
1: अपनेपन
0: समां कढ के है ना
1: जी
0: फिर लिखदा खत ते उहनां ने बड़े ही सुंदर शब्दां दे विच खत लिख्या है योगनगर बुढलाला तों नरेंद्र मेहता वरिंदर मेहता गिरिराज मेहता सिमरन मेहता हनी मेहता ते कहिंदे जी इहनां दे बहुत सारे दोस्त ते इक खत होर है इहनां नूं मैं गुजारिश करूंगी कि थोड़ी जिहा ना हौली हौली आराम नाल लिखा करो सानू कई वारी ना नाम समझ नहीं आते तो असं नहीं चाहते कि तुहाडे नाम असी गलत पढ़ दईए। एक खत है जी पिंड हौला वाली राणी रूप राणी मानवी रूहानी किरना राणी ते इन्हां दा पूरा परिवार ते एक खत है जी मखू तो आर के बजाज बिल्ला ते मोनू बजाज।
1: और एक हथ है जी महज के नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति रानी ते गुरमन्नत होना दा पिंड खैरका सिरसा तो इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन ते हनी लोट और हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो आए ने जी रसाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान ते जिशान खान और ये सुनना चाहते ने शमशाद बेगम की आवाज़ च गीत ते अलका जी फिर की करिए असी
0: सुनावांगे जी
1: जी
0: फरमाइश होएगी तो जरूर सुनावांगे ते
1: बिल्कुल जी
0: सुनदे हैं
1: सुनते हैं
0: शमशाद बेगम दी आवाज़ से गीत।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों

ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी वीरा तुहाड़े नजर करन जा रही हां। पापा कहते हैं फिल्म चोले आ गया गीत, आवाजा दितिया ने उदित नारायण ते अलका याग्निक ने, गीतकार ने जावेद अख्तर ते संगीतकार रोशन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक

0: 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮ ਚੋਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸਮਾਇਲ ਦਰਬਾਰ।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुविंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वज़रा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुविंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तानिया,

एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन चार दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है।

फौजी वीरों, तुहानू सुनाण जा रहे हां टशन फिल्म च लिया गया गीत। आवाज़ां दित्तियां ने उदित नारायण ते महालक्ष्मी अय्यर ने। गीतकार ते संगीतकार विशाल शेखर।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां AIR.com जां news.onair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: फौजी वीरों, इस गीत दे नाल ही अज दे इस प्रोग्राम नू खत्म करन दी मैनू यानी दीपाली नू दे दियो इजाजत। जय हिंद। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
2: ਨਮਸਕਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड

0: ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरल में भी नई सरकार के गठन को

0: लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 854 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए भी सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने राजबीर कौर कैंथ। आओ सुनदे आं इन्हां दी आवाज़ च बोलियां।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानूं जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रंगली धरती। अज तुसी राजबीर कौर कैंथ दे गाए लोक गीत सुन रहे हो। आ हुण सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च माइया।

प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते होस्ट क्रांति के शर्मा हाजिर हाँ तुहाडी सेवा दे विच। अज मैं जिथे तुहाडियां चिट्ठियां पढ़ांगा ते नाल दी नाल तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करांगा, उत्थे नाल दी नाल कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल दिल दियां भी सांझियां करांगा। दोस्तों अज मैं गल करांगा साडे समाज दे चौथे स्तंभ मीडिया दी। जी हाँ, मीडिया भाव एक माध्यम जो समाज विच वापर रहे वर्तारे नूं आम लोगों तक पहुँचाता है। खबरां दे रूप विच सरकार दे कम्मां ते सोसाइटी विच वापर रहियां घटनावां नूं आम लोगों तक पहुँचाता है। अज मैं गल करांगा मीडिया दे वख-वख प्लेटफॉर्म्स भाव सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया दी, ते इन्हां दा साडी जिंदगी ते की प्रभाव है, इस बारे मैं तुहाडे नाल गल करांगा। पहलां तुहाडे मैं कुछ खत पढ़ लिए, तुहाडियां फरमाइशां देख लिए, तुहानूं किन्ना किन्ना ने सानूं दोस्तां ने फरमाइशां भेजियां ने। सो जिहड़ी सानूं पहली फरमाइश आई है, ये आई है गांव हीरा हरिपुर अबोहर पंजाब तो महेंद्र विश्नोई, वेद प्रकाश विश्नोई, अमित विश्नोई, अजय विश्नोई, ज्ञान विश्नोई। अगला सानूं खत आया जी गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करनपुर राजस्थान तो राजू टरेजा खुशदिल, उर्मिला टरेजा, गुड्डू जिन्नू मन्नू, आदित्य भूमि, राखी अमृत बड़वाल, शिव सेठी करनपुरी, स्पाई स्माइल टुडेजा। अगले सानू जिहड़ा खाता आया है वह आया है जी अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। अगला सानू खाता आया जी बनवारी जयपाल, विमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष दिशा सुशांत, विक्रम जयपाल। ये सानू खाता आया है जी रायण तो। अगला सानू खत जिहड़ा आया है वह आया है जी गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद अते पोत्रा गुरशब्द। इन्होंने किसी भी गीत की सानू फरमाइश की है, तो इन्हों सब की मिली जुली फरमाइश के उत्ते आओ तुहानू सुनांदे हाँ ये प्यारा जिहा गीत जिसनों आवाज़ दिती है सरबजीत कौर ने। आओ सुनते हाँ ये प्यारा जिहा गीत।

सुनवाई है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महरा जहां, आजाद नगर, लक्सर हरिद्वार तो, मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल, बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जगतार जगा ढोला किंगरा तो। अगला सानू खता है जी पिंड जलवाल जंडवाला चढ़त सिंह तो, लिखण वाले निरकेश, नरेश, जगदीश, अनिकेत, अंश, बलदेव, प्रेमी, बिंदर, पुनिया, फूना, काली काली, अगला अंग्रेज पट्टी। ते अगला जिहड़ा सानू खता आया है जी, वह मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। अगला सानू खता है जी रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया, पटेल नगर मलोट पंजाब तो। इन्हां सब दी मिली जुली फरमाइश के उत्ते सुनते हाँ जी जसवीर जस्सी की आवाज़ के विच ये प्यारा जिहा गीत।

0: क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इज रियली वेरी गुड, लेकिन भारत ने इस मौके को ताड़ा, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हमने रिकर्व में देखा है कि लड़कों में और लड़कियों में हम लोग सेमी या फाइनल तक आ जाते हैं और वहां पर हमारी गाड़ी अटक जाती है
1: जी।
0: बट दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडियन आर्चरी।
1: और जो फाइनल मुकाबला चाइना के साथ होना है, ये किस तरह से रहेगा और भारत का प्रदर्शन इसमें किस तरह के होने की संभावना है?
0: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनफैक्ट अगर हम देखें कि चाइना जैसी टीम अब अगर आगे आ रही है, इसका मतलब है कि आर्चरी में कंपटीशन बढ़ रहा है
1: जी।
0: हमने मेंस में भी देखा कि भारतीय मेंस टीम बांग्लादेश से हार गई
1: जी जी।
0: वहां पर वियतनाम की टीम भी आगे आकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो चाइना के साथ एक काफी कट टू कट होगा। चाइना भी बहुत सालों के बाद अब वापस उभर रहा है आर्चरी में। तो आने वाले वक्त में भारतीय टीमों को अलग अलग नई नई टीमें, जो टॉप की टीमें हैं और नई टीमें, सबसे बचकर रहना पड़ेगा। तो ये अच्छा एक अच्छी सीख होगी हम सबके लिए।
1: और अगर पंकज जी व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात की जाए तो रिकर्व महिला में सिमरनजीत कौर ने सेमीफाइनल तक वो अपनी जगह बना पाए हैं, इस प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट शी इज अ वेरी गुड शूटर एंड इट्स गुड टू सी कि हमारे यहाँ नई नई जो पौध कहते हैं हम आर्चर्स की
1: जी,
0: वो आ रही है। एंड इट्स गुड टू सी कि सिर्फ नए जो लड़के लड़कियां हैं वो कंपाउंड में नहीं लेकिन रिकर्व में भी आ रही है, क्योंकि फिर क्या होता है, दीपिका कुमारी जैसे सीनियर आर्चर पर हमको बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है
1: जी।
0: तो ये एक अच्छी बात है कि जितना ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ होगा उतना हमें फायदा होगा, क्योंकि देखिए अब ये वर्ल्ड कप का एक और स्टेज होने वाला है 2-3 महीनों में, प्लस उसी समय एशियन गेम्स भी होने वाले हैं
1: जी।
0: तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीने के रेंज में भारत को अलग अलग टूर्नामेंट्स में टीमें भेजनी पड़े
1: जी। जी बिल्कुल,
0: तो ऐसे में नए लड़कियों का लड़कों का उभर कर आना बड़ा जरूरी है।
1: और कंपाउंड में अगर मेंस मुकाबलों की बात करें तो साहिल यादव भी सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, इनका भी रिकॉर्ड पीछे अच्छा रहा है
0: बिल्कुल। और साहिल राजेश ने तो कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ 32 में अभिषेक वर्मा को हराया सिर्फ 2 अंकों से 149-147। और अभिषेक ये गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, जबरदस्त आर्चर है, तो इसका मतलब हमारा वहां पर भी एक अच्छा लेवल बन रहा है। ये वैसी बात हो गई कि नीरज चोपड़ा की आने की वजह से अब हम ओलंपिक्स हो या फिर एशियन गेम्स में हमारे 2-3 जैवलिन थ्रोज आ रहे हैं टॉप 10 में
1: जी जी।
0: उसी तरीके से अब आर्चरी में भी ये हो रहा है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया पंकज अठावले जी साडे नाल गलबात करन लई। पंकज अठावले जो साबका तीरअंदाज ते तीरअंदाजी दे कोच ने, सानू दस रहे सन के विश्व कप विच भारतीय तीरअंदाज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे ने। खेड संसार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जा रहा है। खेड संसार प्रोग्राम हुण गल करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट का हर मुकाबला कुर्सियां के कंधे से बह के वेखण वाला है। पंजाब जिन्हें कि हुण तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, 10 मुकाबलों च 13 पॉइंट्स के नाल पंजाब इस वेले दूजे नंबर पर है। हालांकि काफ़ी देर तक पंजाब सब तो पहले नंबर पर विराजमान रहा है। पिछले हफ्ते होने वाले मुकाबलों च पंजाब की किस्मत ते प्रदर्शन दोवें माड़ा रहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब नूं 33 दौड़ां नाल हरा के पूल टेबल ते पहला नंबर हासिल किया। इस तों पहला पंजाब गुजरात नाल होए मुकाबले विच भी 4 विकटां नाल हार गया सी। क्रिकेट माहिर सोच रहे ने कि हुण तक पंजाब दे आरंभक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह ते प्रियांश आर्या शानदार प्रदर्शन करते रहे ने, पर पिछले 3 मुकाबलों विच उन्हें दा बल्ला नहीं चलिया। खास तौर ते चर्चा हो रही है पंजाब दी टीम दी फील्डिंग दी। सनराइजर्स हैदराबाद दे खिलाफ 4 कैच छड़े गए जिस करके पंजाब नूं हार दा मूंह वेखना पिया। 11 मई नूं धर्मशाला विच पंजाब दा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होएगा, जिस विच पंजाब तों चंगे प्रदर्शन दी आस है। आईपीएल क्रिकेट विच जे बल्लेबाजी दी गल करिए ते सनराइजर्स हैदराबाद दे हेनरिक क्लासन इस वेले पहले नंबर ते ने, जिन्हां ने 11 मैचां च 11 पारियां च 494 दौड़ां 157.32 दे स्ट्राइक रेट नाल बनाईआं ने। अभिषेक शर्मा ने अपनी छिक्के मारन दी कला आईपीएल मुकाबले विच वी विखाई है। 11 मुकाबलों च 475 दौड़ां बना के वह दूजे नंबर पर ने, तो उन्हों का स्ट्राइक रेट इस मुकाबले 210.18 का है। KL राहुल ने भी विकटों के चारों पासे शॉट मार के शानदार बल्लेबाजी की है, तो वह तीजे नंबर पर ने 468 दौड़ां के नाल। सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन 11 मुकाबलों च 409 दौड़ां बना के 4th नंबर पर ने। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार वाल सारिया का ध्यान गया है, जिन्होंने 10 मुकाबलों च 17 विकटा हासिल कीतिया ने, ते विकटा लैण दे संबंध में वह आईपीएल मुकाबले पहले नंबर पर ने। दूजे नंबर पर CSK के अंशुल कंबोज ने, जिन्होंने 17 विकटा 10 मुकाबलों च हासिल कीतिया ने। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी 16 विकटा हासिल करके 3rd नंबर पर ने। रबाडा 4th नंबर पर ने। आईपीएल मुकाबले हुण तक सब तो ज्यादा छिक्के 15 साल

अलन स्यो प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। ये फरमान बिलावल राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित है। जो जीव दी अकाल पुरख नाल अटुट प्रीत दा लखायक है, आप जी फरमाउंदे ने कि हे भाई, प्रभु दे प्यार दी डोर ऐसी कसी हुई है कि वो डोर हुण ना तां तोड़िया टुट सकती है ते ना ही छड़िया छड़ी जा सकती है। अकाल पुरख प्रभु नाल प्रीत पौण दी लोचा रखण वालियां जीव रूपी स्त्रियां ऐसे सज्जन संत दी भाल विच हुंदियां ने जो उन्हां दा मिलाप प्रभु नाल करवा देवे, तां ही तां उन्हां दे हिरदे विचों ए बेनती पिजे बोल आप मुहारे निकलदे ने। प्रभ मिलबे काओ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिलै बड़पागी। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: बैकौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ पागी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमीत सिंह शांत अते उना दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: गौड़ी महला पंजवा। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगू मोहि करू बेनती, को संत मिलै बडभागी। रहाओ मन अर्पो धन राखो आगै, मन की मत मोहि सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। विचार अधीन ए पावन पवित्र शब्द पंचम पातशाह गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज का उच्चारण किया होया है, जो गौड़ी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब दे पावन अंग

मेल लहो दयाल टैपे द्वारिया रख लेवो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz DRM 864 kHz FM band 100.8 MHz 100.9 MHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MA Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

0: योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज, 100.8 मेगाहर्ट्ज, डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: गल है।
1: फिर तेरे सामना की करना चाहिए
0: सर? राजा राम का ठेका कैंसल कर देना चाहिए। सिर्फ ठेका ही नहीं कैंसल करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहना है यह जे सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियां दे लाइसेंस ही कैंसल कर देने
1: चाहिए। अपने आप ते कंट्रोल कर रामलाल, इस तरह ब्लड प्रेशर हो जाता है। तैनू याद है जिस दिन तू मेरे पीए वजो ज्वाइन किया सी, मैं तैनू कुछ गल्लां याद करने लिए कहा सीगा, लगता है तू वह भुल गया।
0: नहीं सर, मैंने सब कुछ याद है।
1: तो फिर दस की कहा सी?
0: इहो कि तुहाडे ते क्लाइंट्स दे विचकार मैं पुल हाँ।
1: होर
0: सर, मैं तुहाडे दोस्तों की शिनाख्त करनी आनी चाहिए।
1: गल्लां याद ने पर गल्लां उत्ते अमल करना भुल गया। राम लाल जी, राजा राम कॉन्ट्रैक्टर साडा अपना बंदा है, मेरा यार है।
0: पर सर, ये जो कुछ भी होया है बहुत वड्डा हादसा है, ये सब गैर कानूनी है सर।
1: राम लाल, तू कानून मेरे तो ज्यादा जानना है।
0: सॉरी सर।
1: हुण ध्यान ना सुन, राजा राम दियां सारियां फाइलां कढ़ाओ, उन्हां उपर नोटिंग करो, ते अज शाम नूं मेरे घर लेके आओ।
0: घर? घर क्यों सर? मैं समझा नहीं।
1: घर आएगा तो समझ जाएगा। आज ठीक 7 बजे।
0: ठीक है सर, ठीक है। हाँ।
1: आओ आओ रामलाल जी।
0: नमस्ते सर। सर तुहानू भी नमस्ते जी।
2: नमस्ते रामलाल।
1: मैनू तो राजा राम कंट्रैक्टर नू इस तरह इकट्ठिया वो भी घर के दारू पींदिया वेख के हैरानी तो हो रही है ना?
0: नहीं सर, ऐसी गल तो कोई नहीं। सर मैं इन्हां दी कंपनी दी सारियां फाइलां ले आया।
1: ठीक है, रख दे टेबल ते। इन्हां दी फाइलां विच पेमेंट वाले सारे कागजों उपर फ्लैप लगा दे।
0: वो तो मैं दफ्तरों ही लगा के ले आया सर।
1: ठीक है, मैं रात नूं आराम दे नाल चैक करांगा। आ बैठ, असी हाले के की पैग लगाया, तू ही ला ले।
0: नहीं नहीं सर, मैं शराब नहीं पींदा।
2: नहीं पींदा तो शुरू कर ले।
1: भाई पहली बारी मेरे घर आया है, आखिर साडा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना।
2: इनकार नहीं करी दे रामलाल, काउंसलर साहब तेनू ऑनर कर रहे ने। अल्ले फाड़े,
0: तुसी तो एवें इज्जत कर रहे हो जी। ये तो बड़ी कौड़ी है जी।
1: अल्ले नाल मेवे खा, कौड़ी नहीं लगेगी।
2: कौड़ा तो बस पहला पैग हुंदा है, फिर भावें जिनी मर्जी पी लो कौड़ी नहीं लगती। आ लै एक होर पैग ला लै।
0: नहीं सर, मैंने तो एक पैग नाल ही चक्कर आने लग पिया।
2: ओ लै लै यार, उन पैग कौड़ा नहीं लगेगा।
0: अच्छा लियाओ जी। वाकई सर, आ पैग कौड़ा नहीं सी। वैसे काउंसलर साहब, शराब बिच वाकई बहुत ताकत होंदी है। वेख लो, मैं इन्नी बार तुहाडे घर आया। हाँ। पर अखां चुके घर नूं वेखण दी जरूरत अज पई है। आहा, तुहाडा घर बहुत वधिया बनिया होया है, क्या नक्शा है।
1: राजा राम होरां बनवाया है
0: सर, हर चीज़ वधिया है। फर्नीचर
1: ये भी तो राजा राम होरां ने दिता है।
0: फर्नीचर की हर चीज़ वधिया है सर। आ फर्नीचर, अलमारियाँ, पर्दे, टीवी, म्यूजिक सिस्टम।
1: इस घर की हर चीज़ राजा राम होरां दी कंपनी वालों आई है।
0: अच्छा जी।
1: ये जिहड़ी शराब मैं ते तू पी रहे हैं ना
0: जी,
1: ये भी राजा राम होरां दी कंपनी वालों ही आई है।
0: सच?
1: हाँ बिल्कुल सच। ये भी इस कौड़ी चीज़ का कमाल है राम लाल, इनू पी के बंदा 100% सच बोलता है।
0: कमाल है, पूरा घंटा हो गया उड़ीकदिया पर बस हाले तक नहीं आई। ओए रामलाल दिया बच्चा, तेनू नशा ज्यादा हो गया, हो सकता है बस लंघ ही होवे, तू ध्यान ना दिता होवे। चलो आपे आ जाएगी। एक काउंसलर किन्ना ट्रीट ते कमीना है, किड्डी शान नाल आख रहा सी एक कर दी हर चीज़ राजा राम ने दिती है, ते हो राजा राम वो तो काउंसलर नालों भी ज़्यादा कमीना है। पई मां

0: चोर से था बा चोर, राजा राम चोर, काउंसलर चोर, दफ्तर चोर, महकमे चोर। इस तरह लगता है जब इस सारी दुनिया चोरां दी परी होए, हर पासे चोरी चोर। 40 करोड़ चोर, चोर ही चोर। ते मैं कौन हूं? अली बाबा? पर वो किस्से कहानी वाला अली बाबा था, चोरां नू मोर होके टकरिया सी। ते मैं किनू टकरा, किस नू टकरा? ओए छड़ ओए, तू की टक्कर लाए? तू तो आप उन्हां कमीनियां चोरां दा कुत्ता बन गया है, जड़ा उन्हां कोलों शराब पी आया है। तू भी चोर बन गया है कुत्तिया, कमीनिया, शर्म नहीं आई तेनू? सारी उम्र ना तो अपने बच्चों का टिड भरिया, आज सरकारी स्कूल दे बच्चों की बिल्डिंग डिगन विच भागीदार बन गए, कल किसी होर स्कूल दे बच्चों की बिल्डिंग डिग पई, किदा बचाएगा उन्होंने? लानतिया, ना मुरादा, शर्म करो, शर्म कर। तू की क्या है, इन्हां नाल लड़ नहीं सकता? जे लड़ नहीं सकता तो इन्हां चोरां दी टोली विच शामिल होण दा वी तैनूं कोई हक नहीं। तो फिर मैं की करां? जा लड़, जे लड़ नहीं सकता तो एक पासे हो जा, पापा दे इस रस्ते तो पूरी तरह हट तो सकदा है ना? हाँ, हट सकदा, पर किवें? बड़ा आसान काम है, अपने मन नूं पक्या कर, सवेरे रूटीन वांग उठ, शेव कर, नहा, मंदर मत्था टेक, ते दफ्तर पहुंच जा, हाजिरी लगा, पौड़ियां चढ़ ते चौथी मंजिल ते पहुंच जा, ते फिर बस इक्को छाल मारनी है, ते बस उन्हां दे रस्ते होर, तेरा रस्ता होर हो जाएगा। की क्या है कि दफ्तरी क्यों? बेवकूफा, दफ्तर विच आत्महत्या करेगा तो हो सकता है कल नूं कोई रामलाल इन्हां नाल लड़ाई करन लई तैयार हो जावे, कोई तो होवेगा जिहड़ा तेरी मौत का कारण समझ जाएगा। ते घट्टो घट इन्हां करोड़ों चोरों विचों एक चोर तक कट जाएगा, रामलाल अली बाबा बन ते मर के लोगों जगा। ठीक है, ठीक है, रामलाल, रामलाल कल इसी तरह ही करेगा, इसी तरह ही करेगा।
1: हाँ जी, रुलिया राम जी,
2: ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਕਬੂਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
1: ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेत।

0: हिंदी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण वेला हो रहा है साडे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दा। पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये लम्हे।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जायटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जायटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जायटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जायटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जायटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। यह घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं। एंग्जायटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक बस सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एंग्जाइटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों: बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना। दोस्तों, इस एंग्जायटी के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य एंग्जायटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जायटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना, और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है। जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि।

0: से पीड़ित लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जाइटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जाइटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब ये पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो ये एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है। घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बड़े, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो ये एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है। व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं। वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जाइटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जाइटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंग्जाइटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंग्जाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंग्जाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लम्हे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੇ ਲਮਹੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में

0: पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं।

शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928, 6 जनवरी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का

0: जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना CD का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए।

0: एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
1: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
2: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
2: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
2: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
3: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा,

0: आप डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं. दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स.
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे. सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया.
2: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है. 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली. मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला. मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था. मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई. मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ.
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है. मैं ICCR के

0: अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के दो टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई, गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो, ये भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखर है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B में एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर है। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोदर हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया।

0: एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से, तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद बुद्ध

0: खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
2: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
2: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जन सम्मोहिनी। राग जन सम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Jan Sammohini. Continuing his recital, he now presents Raag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्न वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107

0: रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaka Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs,

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रात दे 11:10 हो रहे ने। इहदे नाल ही अज दी इस सभा दे प्रोग्राम हुण खत्म हुंदे ने, पर साडे DTH स्टूडियो तो प्रसारण जारी रहेगा। इस मीटर ते कल सवेरे 3:55 ते फिर हाजिर होवांगे। हुण इजाजत दिओ, शुभ रात्रि, जय हिंद।
1: जी दोस्तों, वेला हो गया है प्रोग्राम सौगात दा, ते मैं कमल शर्मा हाजर नाजरा जी लैके प्रोग्राम सौगात, ते तुसी भी हाजर नाजर होवोगे अपने हत्थां च मोबाइल फोन लैके। सो साडे वेड़े अपनियां फरमाइशां पुजदियां करन दे लई साडा नंबर नोट कर लो। साडा लैंडलाइन नंबर है 01 8 23 42 171, ते वट्सएप नंबर है जी 9465536077। इस दे जरिए भी तुसी अपने फरमाइशी गीतां दे मैसेज सानू भेज सकदे हो। ते आओ फिर प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां इस गीत दे नाल।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। और ये गल तां बिल्कुल सही है, ये कर्मां दे नाल ही प्यार मिलदा बजुर्गों का, जिन्हें कोई पिछले कर्म वधिया कीते हो। सो हुण असीं गल करदे हां अपने अगले कॉलर दोस्त दे नाल, वो भी साढ़े कोल पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों तुसीं भी साढ़े वेहड़े पहुँच सकते हो, साडा नंबर है 0161 2341 171, तो वट्सएप के जरिए भी तुसीं अपने मैसेज सानूं भेज सकते हो। साडा नंबर है 9465536077। हैलो,
1: कमल जी, सत श्रीकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं तो कहड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टवाणा, जिला फतेहबाद, हरियाणा तो।
0: देश राज जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है
1: तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: हाँ जी, दसो जी, फिर केड़ा गीत सुनाइए?
1: मिस पूजा दा ला दो जी, सोहणे आ।
0: क्या बात है, जरूर सुनावांगे जी तुहानूं इह गीत। बट एक दो असी मैसेज अपने मित्रां प्यारियां दे पढ़ लई।
1: कोई गल नहीं,
0: धन्नवाद जी। सो दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेजेस सानूं मिले ने, ते इह सानूं अबोहर तों राम सहाय शास्त्री जी मैसेज करदे ने और कहिंदे ने कोई भी गीत सानूं सुना दिओ। ते जरूर जी, नाल दी नाल मंडी हरजी राम मलोट तो नथू राम शर्मा, ललित शर्मा, इंदराज शर्मा, सुरेश शर्मा कहिंदे सानूं कोई भी पंजाबी गीत जिहड़ा उह सुना दिओ। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पखा रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना रजिंदर ओबराए कहिंदे जी लंबड़दार नी फिल्म दा सानूं गीत सुना दिओ। ते जरूर असीं तुहानूं गीत सुनावांगे, पर वारी वारी जिहड़े साडे पहले स्रोतियां ने सानूं फरमाइश कीते गीत ने, पहलां असीं उह सुणांगे ते फिर तुहाडी फरमाइश भी जरूर पूरी करांगे। सरहिंदी बाज़ार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी नीतू, ज्योति सजनी। त्याओ जी, फिर सुनते हैं।

0: क्या बात, क्या बात। हेलो
1: सत
0: जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो बोल रहे हैं? सो
1: जगशीत
0: बहुत बहुत स्वागत जगशीत सिंह जी, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत कर रहे हैं।
1: नहीं
0: नहीं जी, असीं खुल के गल ही करी दी है, बट प्रोग्राम दे विच तां सिर्फ गीत ते गीत दी फरमाइश दी ही गल हुंदी है ना जी। ते दसो कि गीत सुनाइए तुहानू।
1: सर
0: क्या बात है जी, ते जरूर फिर तुहानू असीं लंबड़दार दी फिल्म दा एक गीत सुनाने हैं। धन्नवाद जी कॉल करन दे लई। ते सानू मैसेजेस भी बहुत सारे मिल रहे ने, और मैसेजेस दी कड़ी दे विच सानू जिहड़ा सानू फरमाइश कीती है जी, ये कुरुक्षेत्र तों यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज, परव प्रेम धीमान, चिराग रजत धीमान, राजेश धीमान कहिंदे जी सानू सुरेंद्र कौर होणा दा गाया गीत एक मेरी अख काशनी सुना दिओ। ते जरूर, ते लो फिर जगसीर होणा दी फरमाइश दे उत्ते असीं ये गीत सुणदे हां।

0: हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: बहुत
0: सो बहुत बहुत स्वागत है ठंडा साहब, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। हाँ जी, दसो जी, फिर केड़ा गीत सुनाइए। हाँ, क्या बात है, सुनते हैं जी गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सर
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो। हाँ
0: आहा, क्या बात है, चंडीगढ़ तो जी। तो बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत।
1: सर
0: और सुनाओ जी, ठीक ठाक हो?
1: जी। हाँ, बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: तो ठीक ठाक ही चाहिए। दसो फिर, केड़ा गीत सुना दिए?
1: अमरनोरी का गीत सुनना जी, बाजरे का सिक्का।
0: हाँ, वैसे बाजरे दी रोटी तुसी कदी खाधी, ये दसो पहलो।
1: खाती हुई बचपन की जी।
0: क्या बात है, फिर तो बड़े भागा वाले हैं,
1: हाँ जी,
0: क्योंकि
1: हाँ जी,
0: जदों तक असी वड्डे हुए हैं ते असी तो बाजरे बुजरे का कोई बहुता ज़्यादा नहीं, हुण ही सुनते हैं ज़्यादा।
1: एक मिस्सी रोटी होंगी थी, प्याज पूज
0: हाँ
1: पा
0: जी,
1: के
0: वो तो सुनी है जी,
1: बनाते
0: आपां
1: थे
0: भी वो
1: जी
0: खाधी भी है, सुनी भी है,
1: फिर।
0: पर बाजरे दी रोटी दा जिहड़ा हैगा वो अज कल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है। वो कहिंदे ने कि बड़ियां बीमारियां दूर करदी है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ते
1: हाँ जी।
0: चलो, अमर नूरी होना दा एक गाना सुन के बहुत सारे श्रोतियों ने साडे कष्ट कट्टे जाणगे बाजरे दे सट्टा ही सुन के। कहिंदे
1: ठीक
0: ना भी किसे चीज़ दी महक भी आ जावे ना, ते उहदे नाल भी अद्धियां बीमारियां दूर हो जांदियां।
1: है जी, हाँ जी,
0: ते
1: हाँ
0: लो
1: जी,
0: फिर सुनदे हैं गीत।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। ते नछत्तर गिल होना का भी योग एक बहुत वधिया योग सी, और बड़े अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए हुए ने। आओ फिर गलबात करते हैं अपने कॉलर दोस्त के नाल। हैलो,
1: हेलो कमल शर्मा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं तो कि जगह तो बोल रहे हैं?
1: डेरा कल्याणी फाइनल का तो शर्मा सागर।
0: धर्मा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है। ते
1: चल
0: दसो
1: रहा
0: फिर
1: सर जी, ताजा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत वधिया चल रहा प्रोग्राम। चल रहा
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत चंगा लगा। ते दसो किहड़ा गीत असीं तुहानूं
1: गीत
0: सुनाईए?
1: कन्नर गरे आल सुनावे, मस्त बना देंगे जी।
0: आहा, ना जाई मस्तां दे वेहड़े,
1: हाँ
0: क्या
1: जी,
0: बात है, क्या बात है। ते लो जी फिर सुनो, एंजॉय करो ये गीत।

0: जी दोस्तों, तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी पंजाब ते अपने दोस्त कमल दे नाल। ते मेरा ते तुहाडा ही साथ पूरे 1 बजे तक इदी बनया रहेगा। सो साडे विहड़े साडे अगले कॉलर दोस्त पहुँच चुके ने, आओ फिर रब्ता कायम करते हैं उन्होंने नाल। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कि जगह तो बोल रहे हैं?
1: मैं तरसेम जोर तो बोल रहा हूँ जी।
0: तरसेम जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है। होर तसीम जी, फिर दसो केड़ा गीत तुहानू सुनाइए। हैलो,
1: सावरकोट सुना दो कुछ।
0: सावरकोटी होना दा गीत असीं तुहाडी नज़र करते हैं, पर एक मैसेज असीं पढ़ लीए ते फिर असीं तुहाडा गीत चलावांगे।
1: एक ना
0: धन्यवाद।
1: फोन लगता नहीं जी, सानू मौका दिया करो फोन लाने का जी। मेरी
0: हाँ जी जरूर जी जरूर, ते
1: फ्रेंड
0: बिल्कुल
1: दोस्तों ने पंजाब तो टाइम पाए फोन करा करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी कॉल करने। जी दोस्तों, असी अपने श्रोतियां नूं ये गुजारिश करते हैं कि जिहड़े श्रोतियां दे फोन लगातार लगातार सानूं आंदे ने, जेकर वो थोड़ा गैप पा के सानूं कॉल करया करन, तो साडे नाल नवें श्रोते भी जिहड़े आ वो जुड़ सकदे ने, और ज़्यादा तो ज़्यादा श्रोते साडे नाल जुड़नगे फिर, और साडा परिवार जिहड़ा है वो वड्डा होएगा। तो वो मैसेज पढ़ते हैं, आपां ये देखते हैं किने भेजिया सानूं।

0: हेलो,
1: हेलो कमल सर जी, सत श्रीकाल
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे जी?
1: जी। तो मैं फायर
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है, पूरे टोल
1: का। ओके
0: टपाके
1: सर
0: दे
1: जी,
0: नाल स्वागत है।
1: ओके।
0: होर ठीक ठाक हो जी?
1: हाँ जी, तुम सुनाओ जी। तो
0: बस बहुत वधिया जी।
1: ओदे ना गल हो गई तो वधिया हो जांदे
0: हाँ,
1: जी।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।
1: हाँ जी,
0: ते दसो फिर केड़ा की सुनाइए तुहानू?
1: मिस पुछ लो सर जी, चल फिक्का फिक्का।
0: चल फिक्का फिक्का लो जी,
1: हाँ जी,
0: सुनते हैं जी। धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: ओके सर, थैंक यू।
2: ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार शर्मा जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: भूषण कटारिया मलोड़ तो।
0: कटारिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पूरे ढोल ढमक्के दे नाल असीं तुहाडा स्वागत करते हैं।
1: मेहरबानी।
0: होर ठीक ठाक हो जी?
1: बहुत वधिया जी, बड़े वधिया।
0: क्या बात है, क्या बात है। ते दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए जी।
1: आलम लोहार दा सुना दो जी, जीवन वाला दुखड़ा
0: क्या बात है, क्या बात है। ये गल तो वैसे बिल्कुल ठीक है। ये तो दिल वाला दुखड़ा सिर्फ अपने प्यारियां नूं ही दसीदा।
1: जादू वाला सुनाया तां ही मैं जी। मेहरबानी
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ते लो जी,
1: जी।
0: लो जी, फिर सुनते हैं गीत। धन्यवाद जी।

0: हेलो।
1: हेलो जी,
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं तो किड़ी जगह तो बोल रहे हैं।
1: बिट्टू
0: सो बहुत बहुत स्वागत बिट्टू जी, पूरे टोल टोमा के नाल स्वागत है तुहाडा।
1: थैंक यू, बहुत वधिया लगा ढोल जी, तुहाडा प्रोग्राम भी बहुत
0: धन्यवाद
1: वधिया,
0: जी, धन्यवाद जी।
1: है ही वधिया।
0: क्या बात है, क्या बात है। और साडे श्रोते भी बहुत वधिया, जिहड़े बड़ा
1: हाँ
0: इंतजार कर करके तद
1: जी
0: भी सानू फोन दे करन दे लई लगे रहंदे ने। बड़ा
1: बिल्कुल जी,
0: धन्यवाद
1: बिल्कुल,
0: उहनां
1: क्योंकि तुहानूं साथ देना ही देना जी, भावें कोई लगे चाहे ना
0: दा। हाँ
1: लगे,
0: जी
1: साथ
0: धन्यवाद जी,
1: तुहानूं देना ही देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। दसो कड़ा गीत सुनाइए।
1: हाँ जी, तुसीं गुरदास मान दा इक नवीं भाई सुना दिओ,
0: क्या
1: इत्र फुल
0: बात है,
1: तोड़ लै,
0: आहा
1: बड़े मेहनत
0: क्या
1: बड़ी
0: बात है।
1: छुट्टी
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

ऐ कह गावा तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साकाओ, तू ठाकुर ऊच पगवाना। इस विच कोई अतकथनी नहीं कि अकाल पुरख

महिमा बयान ही नहीं कीती जा सकती, उस दे गुण गायन नहीं कीते जा सकते। पर फिर भी मन विच ए लोचा हुंदी है, गाइए गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाको पेटत होए सगल सिद्ध। सरवण करदे आ भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाकौ पेटत होए सगल निध। इस शब्द गायन कीता सी पाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। ओ परमात्मा सर्ब कला समर्थ है, सब जिया दा दाता है, दीना ते दया करन वाला है, सारे जिया दा रिजक दाता है। तांते फिर दिन रात उसे दे ही गुण गायन करने बढ़ते ने। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना। सरवण करदे आं भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों इस पौड़ी दा गायन।

0: रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा। इस पौड़ी का गायन किया भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस पौड़ी की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दिलबाग सिंह।
1: पौड़ी रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावणा, तू दाता दातार तेरा दिता खावणा, भगत जना कै संग पाप गवावणा, जन नानक सद बलिहारै बल बल जावणा। ए पावन पौड़ी धन गुरु रामदास जी दे पावन मुखारबिन तों उचारण कीती हुई है। अते राग सोरठ वार महले चौथे की सरलेख हेठ बाणी विच पौड़ी दे रूप विच दर्ज है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 652 ते सुशोभित है। गुरबाणी दे शब्द दा केंद्री भाव रहाओ दीआं पंक्तियां विच हुंदा है, पर जिस शब्द विच रहाओ दीआं पंक्तियां नहीं हुंदियां उस शब्द दीआं पहलियां पंक्तियां विच शब्द दा केंद्री भाव मन्निया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां दर्ज हन। वारां विच श्लोक ते पौड़ियां दर्ज हन। केंद्री भाव पौड़ी विच हुंदा है। विचार अधीन शब्द रूपी पौड़ी दीआं पहलियां पंक्तियां हन। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, अकाल पुरख सर्ब कला समर्थ है, सब जीवां नूं पैदा करन वाला है, सब गुणां दा मालक है, ऐसे प्रभु दी सिफत सलाह करनी चाहीदी है। परमात्मा दे प्यारे अमृत वेले दिन रात परमात्मा दी सिफत सलाह करदे हन। धन गुरु नानक साहिब जी दा पावन बचन है, नानक भगतां भुख सलाहण सच नाम आधार। भगत नाम देव जी राग भैरव विच बख्शिश करदे हन। जिवें भुखे मनुख नूं अन्न प्यारा लगदा है, प्यासे मनुख नूं पाणी चंगा लगदा है, माया विच गलतान मनुख नूं अपना ही परिवार चंगा लगदा है, लोभी मनुख नूं धन चंगा लगदा है, इवें अकाल पुरख दे प्यारियां नूं दिन रात उसदी सिफत सलाह करनी चंगी लगदी है। भगत नामदेव जी बख्शिश करदे हन, जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। शब्द की अगली पंक्ति है, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावणा। सारी सृष्टि दे जीव अकाल पुरख पिता जी दे आप उत्पन्न किए हुए ने। समग्र जीव आप जी दे ही गुण गायन करते हैं, आप जी का ही नाम ध्यांदे ने। परमात्मा दे प्यारियां नूं सारे जीव उस करते दी सिफत सलाह करदे नज़र आउंदे हन। श्लोक वारां ते वधीक विच गुरु अमरदास जी बख्शिश करदे हन, हर हट पी तूं तूं करै बोलै भली बाण। गुरु नानक साहिब जी सोदर दे सरलेख हेठ बख्शिश करदे हन,

दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास हुए हर जीवत मर्त संगारी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे जुक्त ना जाने छड़ बहे कारबार, सबको पुराया प्यो।

कहे इक इक तोए खाए न जानेओ। सुपन इक प्रतख इक इक रस में लीनो। तीस इक पर पंज।

और अमरदास अर्थ यह है ओहम पातक बेनासा है गुर अमरदास परस है सिद्ध साधक आसास है गुर अमरदास परस है ध्यान लहिए पहो मुक है गुर अमरदास परस है पहो लपे गौ तुक है एक बिन दो गुण जो